0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी।
2: पंजाबी
3: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Like a radio. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: 02085748410
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: Raj Badden drives Leicester home with Drive at 4 p.m. Like

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

जो तुद्भावे साई बलिकार, दूसरा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक्खाए।

साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव संख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार।

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिब तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहण जाई।

जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अव

0: Breaker Radio.
1: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg still 10.99.
2: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Cell Leicester LE5 4UN.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. अपनी सीट्स आज ही रिजर्व कीजिए. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: Location, location, location.
1: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
1: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
0: High appreciation.
1: In Dubai.
2: ये बवाल इस बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
5: भाई निकाल माइक।
6: भाई भाई के पिया कितना सुंदर।
7: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
10: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
8: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
11: 7 stations.
8: One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
12: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे.

0: Spiker Radio.
1: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald. plastic.com.
4: लेस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ. KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1 to 4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर. 1 to 10 वर्ष ना किड्स वाटे एंट्री जस्ट £5. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल पेजेस 07957477330. मस्ती म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन. रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039. 963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Cutthroat Kekilari, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
8: Cutthroat Kekilari.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: Cutthroat Kekilari, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
8: Cutthroat Kekilari.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
9: Leica Radio.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Back to back hits across the Leica Radio Network.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Leica Radio. लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू. और हर्ज़मैन बटर 20 kg सिर्फ 10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लेस्टर LE5 4UN.
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Rakhi

0: Monster ਗੋਲਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan
3: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
2: Your wake up call. This is Kajal on Breakfast. Leica Radio.
4: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या लगा आपको? मैं नहीं आया हूँ। आ भी गया हूँ और वेदर बता भी रहा हूँ भाई। आज के मौसम के विषय में देर इसलिए लगा रहा हूँ कि कुछ नया तो है नहीं, अभी तक तो वैसा ही चल रहा है जैसा पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन कल से चेंजेस होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और न सिर्फ बारिश बल्कि ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है भाई। इंतजार है उस वेदर का और इस वेदर को जल्दी से जल्दी हम बाय बाय कहना चाहते हैं। तो आज लंदन में आसपास के एरियाज में मौसम वैसा ही, मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ कम हुआ, 26 डिग्री मैक्सिमम, हल्की हवाएं भी चलेंगी और भाई कुछ छुटपुट बादल भी नजर आएंगे।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call South All Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. LYCA. This is Leica.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: ஷியர்.
1: குட் மார்னிங். एक और नए सप्ताह की शुरुआत मनोरंजन के साथ. सोमवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 17 तारीख हो गई साहब. देखिए ना वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है. ये वक्त नहीं गुजर रहा है, हम गुजर रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है. खैर साहब निराशा की बातें नहीं, आशा की ओर लौट आइएगा. माय नेम इज रवि शर्मा. First of all, I want to say thanks to Kajal. She'll be back tomorrow morning. और भाई अब कहूंगा आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ. दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ बहनों भाइयों. और कहता हूँ कि तुमको मेरे दिल ने पुकारा है नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज.
2: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
1: तुमको मेरे दिल ने पुकारा है नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से. भाई ये मेरी आवाज नहीं, मेरे प्यार की आवाज है. दिलदार की आवाज है.
3: ओ सुनाली.
1: दिल के साज के तार की आवाज है. मेरे प्यार की आवाज सुनते ही चले आना, जुड़ जाना लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड से.

0: बैक टू बैक संगीत में दो गीत वही हमने आपके सामने परोसे और मुझे यकीन है कि ये बड़े चाव से आपने सुने। भाई पहला गीत था फिल्म राजमहल से मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, एंड सिंगर्स वर रफी साहब और लता जी। इस जोड़ी ने ऐसे ऐसे भाई हिट और सुपर हिट और मेगा हिट गीत संगीत प्रेमियों के लिए छोड़े हैं कि हम भाई जिंदगी भर जो है उनका लुत्फ उठाते रहेंगे। दूसरा गीत जो अभी आप सुन रहे थे, ये पगला है समझाने से समझे ना, बिल्कुल मैंने प्यार किया, अपने दौर की ये भी सुपरहिट फिल्म थी 1989 की। और साहब लता जी की आवाज में आपने ये गीत सुना। हम इस गीत को गा करके ना गुनगुना करके उन दिनों ये दौर था वो प्रेम प्रसंग जो है बड़ा प्रसिद्ध हुआ था बिल क्लिंटन का और वो क्या थी उनकी प्रेयसी जो मतलब उसको लेकर के समथिंग समथिंग मोनिका थी ड्यूएनसी समथिंग समथिंग नाम था उसका। तो भाई उसको लेकर के कहते कि कुछ पंजाबणे इकट्ठी होकर के और बिल क्लिंटन के घर गई और कहती है क्यों बीबी अपने बंदे नु सामग नहीं रख सकती कि अख में टका करदा फिरदा एक तरह बता प्रेजिडेंट बनया फिरदा ना बिल क्लिंटन बारे शिकायत लेके आई हूं। भाई वो बहुत सारी पंजाबणों ने जाके जब बार बार शिकायत की तो हिलेरी क्लिंटन ने पता क्या कहा,
1: बिल तो पागल है, बिल दीवाना है।
0: और पागल है दीवाना ते बीबी उन्हें समझा तो फिर क्या कहती है हिलेरी क्लिंटन,
1: ये पगला है समझाने से।
0: आप भी इतना समझ लीजिए ये समझाने के बाद कि आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद। चलिए सब सिलसिला शुरू हो चुका है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको पाउंड का रेट बताते हैं। एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में कितने रुपए मिल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके वाले बताएंगे।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK yani State Bank of India UK giving it today 129.3 Indian rupees for one pound. एक पाउंड के बदले 129.30 रुपए का रेट चल रहा है और भाई भाई यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: One performer.
4: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover live UK tour 2026.
2: 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: Nauca plus abhe stop plus.
1: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है।
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
3: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
5: और लीजिए सब Dairy Valley वालों का ये तोहफा। दरअसल बात यह कि इस गीत को सुनवाने से पहले मैं सीधे गीत भी लगा सकता था, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जो गीत आ रहा है ना, ये किसी क्या वो होते हैं भिखारी होते हैं, उन पर पिक्चराइज हुआ है। और भिखारियों पर इतने गीत बने हैं, एक पूरी जो है ना श्रृंखला उनकी तैयार हो सकती है। रफ़ी साहब ने कुछ गीत बहुत दर्द भरे स्वर में गाए हैं, याचिका वाले, एक याचक वाले स्वर में। और भाई रवि साहब जो धुन बनाते हैं किसी मांगने वाले के ऊपर जो गीत पिक्चराइज हुआ हो, उसकी क्या बात कहें। सुनिए जरा, और ऐसा जी चाहता है कि कुछ ना कुछ दे डालें भाई इसको।

0: दुआ भाई, गीत में दुआएं हैं, गीत में याचना है, औलाद वालों फूलो फलो। रफी साहब और आशा जी की आवाजें और महान संगीतकार रवि की बनाई धुन। और मैंने भाई मुझे लगता है कि रवि साहब ने तो खुद कहा था कि मैं तो गली में एक भिखारी का गीत सुन करके मेरे दिमाग में एक धुन बैठ गई, मैंने वो गीत रच दिया, बड़ा बेदर्द जहां है। कहते वो गुनगुनाते हुए पहली लाइन को पीछे ऐसे छोड़ता था जैसे ड्रॉप कर रहा हो, बड़ा बेदर्द जहां है, नीचे ले आता था आवाज को। कहते मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया इस गीत में, वो जो गा रहा था वो कुछ और था, लेकिन उसका जो गाने का स्टाइल था वो मैंने अपने गीत में इस्तेमाल किया। और भाई ये भिखारियों वाले कई गीत कहते हैं, मैंने भिखारियों को सुन करके मेरे को ये प्रेरणा मिली। रफी साहब भी कहते हैं कि एक भिखारी को गली में गाते हुए सुनकर ही उसे वो गुनगुनाने लगे और उन्हें गायन की प्रेरणा उनसे भी मिली थी। तो भाई ऐसा सुनने में आता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि मांगने वाले या कुछ बेचने वाले या कुछ इस तरह का काम करने वाले भाई जो गीत गाते हुए अपना कारोबार चलाते हैं, बड़े सुरीले हो जाते हैं और बहुत सुरीला गुनगुनाते हैं। साहब खबरों का समय हुआ जाता है, पहले तो बताते हैं कि गीत आप तक कौन पहुंचा रही है।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: यूरोपियन एथलीट्स की चैंपियनशिप्स के जो मेडल देने की सेरेमनी थी, कहते वो डिले कर दी गई है क्योंकि चैंपियनशिप्स के बारे में कहते पुलिस ने कुछ फ्रॉड अरेस्ट किए हैं। और इसके अलावा भाई मौसम को लेकर के भी खबरें गर्म हैं, कहती हैं आने वाले दिनों में बिल्कुल अपोजिट जो है न सिर्फ बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं पर ओले पड़ने की आशंका भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक यूं समझिएगा कि चुनौती होगी यहाँ ब्रिटेन वासियों के लिए कि उन्हें इस मौसम से निपटना है क्योंकि हवाओं का रुख भी बदलेगा। तो आने वाले समय में भाई देखते हैं क्या कुछ बदलने वाला है। इसके अलावा आज के समाचारों में और क्या क्या है देखते हैं।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा, लाइक अ रेडियो।
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का सांझे रक्षा डिफेंस समझौते पर रिएक्ट किया है। उन्होंने तीनों मुल्कों के नेताओं को बधाई देते हुए इसे एक बोल्ड स्टेप बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर यानी मक्का ज्वाइंट डिफेंस समझौते पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। ये दिखाता है कि मिडल ईस्ट एक साथ आ रहा है और देश आखिरकार अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से कदम उठा सकेंगे। और भाई इसके रिस्पांस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद भी किया है, शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मक्का समझौते पर दस्तखत किए जाने पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए समर्थन के लिए, दी गई हिमायत के लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भारत से आने वाली खबरों में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी के मामले में एक डायरेक्शन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट में चल रही कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित करने का, पोस्टपोन करने का निर्देश दिया है। दरअसल इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों केंद्रीय एजेंसियों को राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए इल्जामों की पुष्टि करने के तायिद करने के निर्देश दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने चिदंबरम की दिमागी नक्सली वाली टिप्पणी पर एक बयान दिया है। चिदंबरम ने कहा था कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। मेंटली नक्सली होने पर भैया दिमाग के तौर पर इस पर पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम लोग हैरान हैं कि मात्र 24 घंटे के भीतर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद निकल कर सामने आ गया। फॉर्मर होम मिनिस्टर और वित्त मंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर फक्र है। कितनी हैरानी की बात है। एक खबर और चर्चा में, एक गाड़ी भाई फरारी बहुत चर्चित है क्योंकि ये पहली फुल इलेक्ट्रिक कार है और एक नीलामी में $4 करोड़ यानी करीब 382 करोड़ रुपए में बिकी है। ये नीलामी एक चैरिटी के लिए हुई थी और भाई ऐसे काम के लिए लोग और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई इस नीलामी में फेरारी लूचे नाम की यह कार सामान्य कीमत से आम प्राइस से 35 गुना से भी ज्यादा बोली में बिकी और नीलामी घर ने बताया कि यह कार पहली प्रोडक्शन चेसिस है। इसमें खास फिनिश के साथ कई कस्टम पार्ट्स लगाए गए हैं। किम जोंग के साथ अच्छे रिश्तों के कारण ट्रंप ने साउथ कोरिया को लेकर एक कदम उठाया। अच्छे रिश्ते दोनों के बीच वल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका साउथ कोरिया के साथ होने वाले साझे फौजी अभ्यासों में काफी कमी करेगा। उन्होंने इसकी वजह उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने बहुत अच्छे रिश्तों को बताया। यानी साउथ कोरिया के साथ तो अमेरिकी रिश्ते हैं, वो फौजी अभ्यास करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने के कारण अब हम साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कम करेंगे, उनमें कमी करेंगे। योग गुरु रामदेव ने कहा, बच्चे अगर आंदोलन करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब। योग गुरु रामदेव ने कहा कि आंदोलन में बच्चों को नहीं धकेलना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे कब अगर वो आंदोलन में व्यस्त रहेंगे तो। उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन का हालांकि समर्थन करते हैं, हिमायत करते हैं, लेकिन अराजक आंदोलन का बिल्कुल नहीं। रामदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के बचपन खतरे में है, इसलिए इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कुछ लोग बचपन का इस्तेमाल आंदोलन में कर रहे हैं। बंगाल से खबर आई है, वेस्ट बंगाल से। वीरभूम जिले के तारापीठ में आज तड़के एक होटल में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कम से कम 12 लोगों को रामपुर हॉट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और भाई प्रशांत किशोर का एक बयान चर्चा में बना हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का इल्जाम लगाया। यह विवाद 15 अगस्त 2026 को मतलब इसी इंडिपेंडेंस डे पर कांग्रेस के हेडक्वार्टर में झंडा लहराने के कार्यक्रम के दौरान सामने आए एक वीडियो के बाद शुरू हुआ है। इस मामले में जन स्वराज पार्टी के फाउंडर और विधायक प्रशांत किशोर की टिप्पणी भी आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बयानबाजी करने की बजाय सोनिया गांधी पर केस कर देना चाहिए। इल्जाम यह कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। और साहब रूस का दावा है, रूसी अधिकारियों ने ये क्लेम किया है कि यूक्रेन ने रूस पर इस साल का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान करीब 822 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 600 ड्रोन्स ने राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और अब लौट आइए संगीत की ओर। मोहम्मद रफी साहब की आवाज एक बार फिर आपके कानों में रस घोलने आ रही है।
4: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Ye hai Laika Radio. Laika
2: Radio. Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
3: और साउथ ओल्ड ट्रेवल के संदेश भाई कि वो FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। अब तो भाई ऑल ट्रेवल जो है वो पॉसिबल है, तो जरूर यात्रा कीजिएगा। कॉल साउथ ओल्ड ट्रेवल फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208574 8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: listen to the freshest hits added daily on Lycra Radio.
1: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
0: Lycra Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LycraGold.com.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 एम टू 1 पीएम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

नॉट फॉर द डे, आज का विचार। लाइका रेडियो नेटवर्क वर्क पर लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में भाई ये मनोरंजन है और मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं दोपहर बाद 1 बजे तक ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ, लेकिन इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, मैं पेश करता हूँ आज का विचार जिसे हम कहते हैं चिंतन।

आज के चिंतन में शामिल करने के लिए आलेख हमें गगन अरोड़ा ने भिजवाया है। गगन कहती हैं कि उनकी बेटी की शादी के अवसर पर एक गीत भी प्रोग्राम में शामिल कर दीजिएगा, भाई कर लेंगे आगे चल करके। फिलहाल आपका चिंतन बहुत अच्छा लगा और आज के भाई इसमें हम क्रम में शामिल कर रहे हैं। तो सुनिए बहनों भाइयों, सम्राट कौन है, सेठ कौन है, धनवान कौन है? चाइना की ये बात है। कन्फ्यूशियस बहुत बड़े विचारक हुए हैं। कन्फ्यूशियस एक जगह बैठे थे तो सम्राट चाउथिन, चीन के सम्राट उधर से गुजरे। चाउथिन ने कन्फ्यूशियस से पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं। सम्राट हैरान था, बोले तुम राजा हो? राजा तो मैं हूं। सम्राट मैं हूं, इस देश का शासक मैं हूं। तुम कैसे कहते हो अपने आप को सम्राट? मेरे पास फौज है, मेरे पास महल है, मेरे पास सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, मंत्री हैं। तुम यहां अकेले जंगल में बैठे हो, फिर सम्राट कैसे हुए? तो कन्फ्यूशियस जोर से हंसे, जैसा कि भाई वो अक्सर हंसते थे, मुस्कुराते रहते थे, खुश रहते थे। राजा ने फिर पूछा, बताओ तुम्हें सम्राट किस कारण से माने? तो कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, तुम राजा इसलिए हो कि तुम्हारे पास नौकर चाकर हैं, सेवक हैं। पर सेवक तो उसको चाहिए जो आलसी होता है, जो लेजी होता है, हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करने लगता है। इसलिए मेरे साम्राज्य में सेवक की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह तुम्हारे पास सेना है, तुम अपने आप को इसलिए राजा कहते हो। तो सुनो, सेना की, फौज की जरूरत उसको होती है जिसके दुश्मन हो। मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। ठाट बाट, धन वैभव भी उसे चाहिए, धन दौलत उसको चाहिए जो दरिद्र हो, गरीब हो बहुत, और असंतोषी हो, जिसके पास सेटिस्फैक्शन की कमी, जो लालची हो, और मांगता है, और चाहता है, उसको धन दौलत चाहिए। मैं तो संतुष्ट हूं, मैं हर तरह से तुमसे ज्यादा सुखी हूं। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, नौकर चाकर नहीं चाहिए, फौज नहीं चाहिए, राजमहल नहीं चाहिए। मैं यहां संतुष्ट हूं, खुश हूं, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए मैं खुद को सम्राट मानता हूं। सम्राट चाउथिन कन्फ्यूशियस के तर्कों का उत्तर नहीं दे सका और उसके सामने श्रद्धा से झुक गया। सचमुच राजा तो वही है जिसे कोई लालच नहीं है, जिसे अच्छी नींद आती है, समय पर भूख लगती है। राजा तो वही है जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसे फौज नहीं चाहिए, और वो लेजी नहीं है इसलिए उसे नौकर चाकर भी नहीं चाहिए। राज है ना पाठ है, फिर भी जो है राजा साहब, सचमुच वही है राजा साहब। आप भी अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप संतुष्ट हैं? अगर हैं तो आप भी हैं राजा साहब।

0: धन वैभव राजपाट सुख दुख ये तो मन की अनुभूतियां हैं, एहसास हैं। मन से आप राजा हैं तो आप राजा हैं, और मन से जो दरिद्र होता है वो राजा होकर भी वो लालची रहता है और धन पाने की इच्छा रखता है और राज्य हथियाने की इच्छा रखता है। आज का चिंतन, आज का विचार हमें भाई गगन अरोड़ा ने भिजवाया। गगन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चिंतन के साथ जो गीत हमने शामिल किया, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म राजा साहब, जैसा कि टाइटल से ही पता चला। और भैनो भाइयों, हमें एक डेडिकेशन भेजी है गगन अरोड़ा ने। कहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ है, तो उनके लिए गीत लगा दीजिएगा। तो जरूर मैं ब्रेक के बाद जो गीत लगाऊंगा वो आपकी बेटी शिवानी के लिए होगा, शिवानी और उसके वंडरफुल हस्बैंड ऐना के लिए। ऐना और शिवानी विवाह के बंधन में बंधे हैं। 15 अगस्त को कहते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ऐना गुलाम हो गए, बंधन में बंध गए। वल बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं शिवानी और ऐना को, और भाई ये गगन की ओर से, उनके परिवार की ओर से, और बर्क परिवार जिसमें बेटी गई है डेविड और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। गीत का इंतजार कीजिए, पहले हम चिंतन को समेट लें। याद दिला दूं भैरव भाइयों, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी State Bank of India UK today giving 129.3 रुपीस, इंडियन रुपीस मैक्सिमम फॉर वन पाउंड। तो भाई अगर अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं, खासकर राखी के अवसर पर बहनों को भिजवाना चाहते हैं या दोस्तों रिश्तेदारों को, इस समय भारत में पैसे भेजने का सही समय है, क्योंकि SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK कहते हैं रेट अच्छा चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। TNDC अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. This is Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg

0: 29.96 एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99
1: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN
2: लिस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th October लाइव फ्रॉम इंडिया गरबा डांडिया म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड्स कोन लिस्टर टिकट्स जस्ट £5 दी स्टार्ट बुक योर टिकट्स नाउ ऑन टिकट सोर्स और कॉल BJ 07957477330 रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
0: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
3: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
0: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
3: Also explore 2026 cruises.
0: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all.

0: Listen to Leica Gold 2 on Leica Radio mobile app, leicaradio.com and Alexa. Play Leica Gold 2.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
2: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound
2: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
1: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
2: Official radio partner, Leica Radio, Greater Manchester.
3: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने, तो एक सवाल का जवाब दे।
4: पूछ ही लो सर।
3: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
4: फरवरी सर।
5: सर, साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
6: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस।
3: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा।
0: दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to Minar Jewelers about whether gold is really the best investment.
7: Gold is something which you have in your pocket. It keeps on going up in value. And if you look historically, and on the last 26 years, the price of gold has gone up by 1,895%. No other single item, including property, has gone up as much as gold.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
8: Leica Radio.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. It's summer on the Leica Radio Network.
9: और ये गीत शादी के बंधन में बंधे जोड़ों के नाम, कपल्स, स्पेशली शिवानी एंड एना। हैप्पी वेडिंग, शुभ विवाह संस्कार की बहुत बहुत बधाई गगन जी आपकी ओर से, और बर्क परिवार की ओर से, डेविड की ओर से, और उनके सारे परिवार की ओर से। बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारी ओर से भी शुभकामनाएं एना टू शिवानी। क्या कह रहे हैं,

0: This is Leica Radio across the Midlands.
1: बैक टू बैक संगीत हमने आपको सुनवाया और अब भाई एक प्रायोजित गीत सुनवाए और उसके बाद क्या कुछ ढूंढ कर लाए क्योंकि आज एक त्योहार भी है। दरअसल क्या हुआ कि मैंने सुबह सुबह अपनी पत्नी को चाय या कॉफी बना के देने की बजाय आज एक कप दूध उनको बना के दिया ना गर्म करके, तो कहने लगी क्या बात है आज दूध क्यों। हमने कहा कि आज दूध पिलाने से पुण्य लगता है। क्या त्योहार है आज? मैंने कहा नाग पंचमी। तब से भैया झगड़ा चल रहा है। नाग पंचमी है आज। मैंने भाइयों अपनी पत्नी को दूध मत पिलाना नहीं तो वो समझ जाएगी कि क्यों पिला रहे हो। वैसे पर्व है भाई ये, तो आपको हंसाने के लिए बातें बनानी पड़ती है वरना इस पर्व का भी एक अपना महत्व है। और लीजिए सुनिए गीत, प्रायोजित गीत जो है वो नाग पंचमी के अवसर पर। मुझे लगता है कि ये गीत अच्छा लगेगा।
0: ये है Leica Radio Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
1: पिछले हफ्ते भी शायद हमने भी बताया था बहनों भाइयों के नाग के या सांप के या नागिन के कान नहीं होते, फिर वो बीन की ये धुन सुनकर के झूमते कैसे हैं? क्योंकि वो तरंगों को पढ़ते हैं आंखों से, इसलिए उन्हें चक्षुश्रुवा कहा जाता है, आंखों से सुनने वाले। उनके पीछे से भी कोई व्यक्ति गुजरेगा तो उनको पता लग जाएगा। हवा की लहरों को पढ़ते हैं वो, बीन की लहर को इस तरह से आंखों के माध्यम से एंजॉय करते हैं सांप लोग। बहुत सारे फिल्मी गीतों में भाई बीन का उपयोग किया गया है और सबसे बढ़िया तो लता जी की आवाज में जो गीत है ना, तन डोले मेरा मन डोले, संगीतकार रवि और संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह, इन दोनों ने जो लहरा उठाया भाई बजाया दुनिया भर में छा गया।

0: the one and only one, Ravi Sharma, on your number one radio.
1: अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हुस्न चला कुछ

0: कमाल हो गया भाई, बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आकर के चिपक गए हैं हमारे स्क्रीन पर। हेलो कहना चाहते हैं विजय को सटन में, थैंक यू वेरी मच। और नीलम बख्श, नीलम जी मुन्ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रिसीव्ड योर मैसेज, थैंक यू वेरी मच। और आप हैं हेलो शर्मा जी, नमस्ते फ्रॉम सुकू भाई, केम छो तमे सारू, प्रकाश नॉर्थोल्ट में, जगदीश बुशी में, भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर भाई आपका भी शुक्रिया, हेलो हरियाणवी वाली ले लो हेलो। सीजर फर्नांडिस साहब, अर्जुन जी, रागिनी, अनिल सोनी वियाना में, और महेंद्र पटेल क्रोइडन में हमें सुन रहे हैं, थैंक यू भाई। आपको याद होगा कि कल 16 तारीख को ठीक है, वो काजल ने भी बताया था कि नुसरत फतेह अली खान साहब की पुण्यतिथि थी, यानी बरसी थी, लेकिन बरसी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वो प्रधानमंत्री जो सीमा के दोनों तरफ बड़े लोकप्रिय थे और भाई बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ, उनकी कई बातें हमारे चिंतन का विषय बन सकती हैं, लेकिन भाई आज श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। पर जरा सोचिए, 15 अगस्त को अगर वाजपेयी जी की डेथ होती तो पूरा भारतीय स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन प्रभावित होता, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने आप को वही रोक के रखा कि मैं जाऊंगा दुनिया से तो उस दिन नहीं जाऊंगा जिस दिन पूरे हिंदुस्तान को शोक मनाना पड़े सेलिब्रेशन की जगह। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाए, इसलिए अटल जी ने 16 अगस्त को आखिरी सांस ली। भाई हम श्रद्धा से नमन करते हैं उस महान राजनीतिज्ञ को।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: मंजूर नहीं था उनको कि भाई झंडा झुके 15 अगस्त को, झंडा लहराता रहे तिरंगा। अब भाई रेट्स बता दूं आपको LemFi की, अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो दे आर गिविंग For £1, they are giving 129.65 Indian rupees, 375.86 Pakistani rupee. Sri Lankan rupee 1 pound ke badle de rahe hain 450.13, Bangladeshi take 166.16 and Afghani 88.78.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: गोल्ड महंगा हो गया है भाई, लेकिन लाइका गोल्ड तो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। वेल रियल गोल्ड जो है, इट इज सोल्ड इन द मार्केट एट द रेट ऑफ 104.34 पाउंड्स पर
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, Payback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.

0: Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. This is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
2: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
3: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
6: Hey, boy!
7: Coast Guard, we're stuck.
8: Okay, help's on its way.
7: Hold on, mate.
9: Shoes, tide, phone.
10: Back before dark, love. Okay.
11: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
12: Manoranjan with Ravi Sharma.
13: और भाई आज 17 अगस्त को नाग पंचमी के त्योहार के साथ साथ कुछ इंडिविजुअल त्योहार परिवारों में मनाए जा रहे हैं, अपने पर्सनल त्योहार जैसे कि जन्मदिन. और भाई आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द नेम. आज जन्मदिन है सचिन पिलगांवकर का. एक्टर सचिन को तो जानते हैं, भूले नहीं होंगे. भाई मजे की बात यह कि सचिन 17 अगस्त 1957 में जन्मे और उनकी पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर वो भी आज ही के दिन अपना जन्मदिन मना रही हैं. और भाई इनका परिचय तो बचपन से ही फिल्मों में काम करने लगे थे सचिन बाल कलाकार के रूप में. लेकिन पहले इनका सरनेम होता था राजाध्यक्ष, बाद में ये पिलगांवकर कैसे हो गए लंबी कहानी साहब. मुंबई में आके फिल्मों में कामयाब हुए तो सचिन पिलगांवकर से परिचय पूछो तो कुछ यूं कहेंगे.

गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से। वैसे भाई गुजराती और मराठी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, एक हरियाणी फिल्म में भी ये काम कर चुके हैं, हमारे शहर में शूटिंग की थी।

0: लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट 5 pounds टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल पीजेस 07957477330 मस्ती म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
3: भोजपुरी बवाल
4: पवन जी मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है
5: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
6: कहां से ही झगड़ा चला था भाई
7: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी
8: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
9: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
10: आर्टिस्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह हैं भाई मशहूर गीतकार शायर लेखक साहिर लुधियानवी भाई साहिर साहब के बहुत सारे गीत जो है अवार्डेड है साहिर साहब के बहुत सारे गीत इतने प्रसिद्ध हैं कि वो लोगों की जुबान पर हैं पर साहिर साहब को जब हम याद करते हैं तो अक्सर संगीतकार रोशन संगीतकार रवि और लेखिका अमृता प्रीतम भी

0: साहिर साहब के गीत गूंजेंगे भाई, नगमे उनके जो है छाए रहेंगे इस सप्ताह, क्योंकि ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। देखिए साहिर लुधियानवी साहब के साथ भाई कई नाम जुड़े, और लेखिका अमृता प्रीतम उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थीं, और भाई उनके नाम चर्चा मैंने सुधा मल्होत्रा के साथ भी उनका नाम जुड़ा। और साहिर साहब जो है यूँ कहिए कि उर्दू शायरी के ऐसे शायर थे जो सीमा के दोनों तरफ जो है बड़े मशहूर, और भाई कॉलेज में पढ़ाए भी जाते हैं, उनके गीत गुनगुनाए भी जाते हैं। लिटरेरी ही वॉज अ प्रोफेसिव पर्सनैलिटी, और आपको बता दें कि पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी उन्हें मिला, और ये 1973 में मिला था, और बहुत सारे उनके गीत जो हैं वो भी नॉमिनेट हुए और सम्मानित भी हुए। तो भाई इस सप्ताह तैयार रहिएगा आर्टिस्ट ऑफ द वीक टाइटल के तहत आप सुनेंगे साहिर लुधियानवी की रचना।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Geet to sunwaya nahi aapne, thanks kar diya. Zara phir se shuru ho jaiye.

नजरों में प्यार, लब पे मोहब्बत की बात है। ए जाने वो हवा, ए जाने वफा तेरी इजाजत की बात है। उकसा रहा है कुछ तो ये मौसम खताओं पर, कुछ मेरी बेईमान सी नियत की बात है।

0: चोरी चोरी लुक छुप आ दो बता कर ले। दो बातें क्यों भाई, दो चार बातें, दस बीस बातें। और तुम नहीं करोगे, लुक छुप के बातें करोगे तो फिर लोग बातें करेंगे। मुझको मिली है इश्क की तौफीक खुदा से, तुझको मिला है हुस्न ये किस्मत की बात है। बहकी हुई निगाह पे गुस्सा न कर सनम, मुझको तेरी कसम ये शरारत की बात है। नजरों में प्यार, लब पे मोहब्बत की बात है, ऐ जाने वफा तेरी इजाजत की बात है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: एक बार फिर गूंजती हुई रफी साहब की आवाज, इसमें और ज्यादा शरारत है। हंसा बोरा सुन रही है हमें अहीर गनोआ साहब, यादव जी थैंक यू वेरी मच, विजय शेखर सब भाई साथ जुड़े हुए हमारे, थैंक यू आप सब के लिए ये गाना। समझ गए होंगे कौन सा गाना है ये। ये शरारत की बात है। तो मैं सीधा बोला जट यमला पगला, मैं क्या जानू शरारत। रफी साहब धर्मेंद्र के लिए।

0: Bikes are brought to you by Southall Travel.
1: साउथहॉल ट्रेवल याद दिला रहे हैं आपको भाई कि साउथहॉल ट्रेवल जो है दुबई के लिए बहुत बढ़िया डील्स दे रहे हैं। दरअसल FCDO ने जो सूचना दी थी पहले यात्रा के बारे में वहाँ कि दैट वाज अगेंस्ट बट ऑल एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई, लेकिन अब जो है खुला है भाई, वहाँ पर सबको निमंत्रण है। कॉल साउथहॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th of September, Dumontford Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets book करें dumontfordhall.co.uk
3: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786-280-655. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

सलमा आपके नाम ये गीत, आपके लिए ये गीत भाई इबादत का गीत है। और फरीदा गुलाम अली जी आज ये सुनकर संतुष्ट हो जाइए, आपकी पसंद का वो गीत भी बुधवार को प्रोग्राम में शामिल करेंगे।

आप यकीन करेंगे भाई, एक वो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी और नुसरत फतेह अली खान साहब, प्रेम चोपड़ा जी, वही कई लोगों ने हमने मिलकर के एक फिल्म देखी साथ साथ, और वो साथ 3 घंटे बिताने का अनुभव, और फिर एक बार खान साहब को सोने का मुकुट पहना करके यहाँ जो सम्मानित किया गया लंदन में, खुदा का करम था उन पर, खास कृपा थी उन पर, रहमत।

0: श्रावण मास का सोमवार है भाई, हमारी वत्सला जी याद दिला रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको शुभकामनाएं श्रावण की और सोमवार की। और बहनों भाइयों, कार्यक्रम में अब आपसे अनुमति लेने का समय आ रहा है। हमारी शशिकला तालम सुन रही हैं। शशिकला लिखते हो, शशि नहीं, शशिकला तालम। और शशि जी ये गीत आपके नाम करते हैं, पंख होते तो उड़ाती रे। आप ऐसे ऐसे गीतों की प्रशंसिका हैं, अपने नाम कर लीजिए। और बहन भाइयों, अब याद दिला दूं आपको कि हमारी आपकी अगली मुलाकात कल होगी 10 बजे की खबरों के बाद। बाली भाई इज ऑन हिज वे, ही विल बी विद यू आफ्टर 1 o'clock न्यूज।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
0: हैव अ सुपर्ब डे, इजाजत दीजिए, बाय बाय। घड़ी रोके नहीं रुकती है समय रोके नहीं रुकता है, रवि शर्मा भी अब चलता है, बाय बाय।

0: वाह वाह वाह, अभी दो गाने मैंने सुने तो मैं साथ में गाने लगा और इतना दिल खुश हो गया मेरा. फ्रॉग इन द थ्रोट, आई एम सॉरी. मैंने टाइप किया मेरे ख्वाबों में तो दोनों गाने निकल आए. मैंने सुना, मैंने सोचा कि दोनों गाने मैं क्यों ना सुना दूं आपको. आई एम सो सॉरी, आई हैड अ फ्रॉग इन माय थ्रोट एंड आई हैड टू क्लियर इट आउट व्हाइल टॉकिंग. तो हनीमून फिल्म 1960, उसमें मुकेश जी ने क्या गाया लता जी के साथ, सलील चौधरी की ट्यून मेरे ख्वाबों में. एंड शैलेंद्र जी ने वो गाना लिखा इतनी खूबसूरती से. एंड दूसरा तो जतिन ललित का संगीत था और आनंद बख्शी जी ने लिखा था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन बॉलीवुड. सो दोनों गाने हिट रहे ना, आगे भी हिट ही होंगे, डोंट वरी. एक जस्ट अ विस्पर, तलत महमूद जी का गाना है ख्वाब पे, वो मैं आपको सुनाऊंगा जरा, यू नो. उसके बाद हेमंत दा, हेमंत कुमार जी का गाना सावर, तो आपने मजा करना है और मैं भी मजा ले रहा हूँ. वैसे तो मैं हूँ बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप. एंड इट इज द 405th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स. मिडलैंड वालों नमस्कार. एंड सैंडी शाह इज गोना कम एट 4 PM एंड राज पतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 4 to 7. सो इट्स वीक नंबर 33, 229th डे ऑफ 2026, 136 डेज लेफ्ट नाउ, यस. एंड इट इज 336th डे ऑफ द 4th ईयर of Leica Gold. It used to be Dil Se and it was rebranded on 13th of September 2022 as Leica Gold. This was the brainchild of our CEO Raj Patan. And today it's 336th day of the 4th year of Leica Gold, sailing high in the sky. I would say sailing, yes. Flying and sailing, yes, it is one of the top radio stations in the country. And आगे जाते हुए इतने सारे messages आप लोगों के आगे, and we got Seher ji and Prakash Somaiya who joined the party now, and Hannah and Bharti and Mitul and who else is there? Bali Bhai, I'm enjoying your show. It's Suman Regmi. Is it Regmi? Lovely name though, Suman Regmi from Watford. Yes, welcome to Gold Afternoons. Such a lovely message there. And Rama Patel, all the way from India and from Ahmedabad. Thank you very much for your wonderful messages as they are trickling in. There are many silent listeners. I would love to hear from you because pata chale ki aapki choices kya hai, to main waise gaane aapko sunata rahun. Lekin abhi to choice ekdam tight hai and house full hai. Maza aane wala hai abhi. Romantic gaane bhi sunayenge, chatpate gaane bhi sunayenge, alag alag singeron ke gaane sunayenge. Because this is Leica Gold aur main hoon Bali Brahm Bhatt aapki khidmat mein.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 129.3. 129.3 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brahm Bhatt. Bali Brahm Bhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pulp, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99।

0: What a song, huh? Talat Mehmood Saab, that velvety voice. ये मैं नजर करता हूँ फरीदा गुलाम अली जी की एंड सलील चौधरी की ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन और शैलेंद्र जी ने लिखा गाना. फिल्म एक गांव की कहानी 1957. होप यू आर एंजॉयिंग. थैंक यू किरण. साइलेंट लिस्टनर.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर.
1: ये है लाइका रेडियो. लाइका, लाइका, लाइका, लाइका, लाइका, लाइका, लाइका, लाइका,

0: ये ख्वाब वाले गाने अभी नहीं है. I just gave you an example of 3 or 4.
1: कातिल तुम्हें पुकारूं ये जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूँ कि मैं तुमको क्या कहूँ.

0: अरे वाह, क्या लिखा क्या लिखा। एंड लता जी ऑफ कोर्स हृदयनाथ मंगेशकर के लिए गा रही है, तो इनकी आवाज तो एकदम बुलंद सुनाई दे रही है। एंड सुरेश वाडकर जी ने भी बहुत अच्छा गाया। हृदयनाथ मंगेशकर की फिल्में तो आपको मालूम है, लेकिन फिल्म का क्या म्यूजिक दिया था इन्होंने। फिर दूसरी फिल्में थी मशाल और कुछ दूसरी, बहुत याद नहीं है मुझे, लेकिन ये तो है धनवान। Thank you for your messages. You're loving it, I know.
1: This is Leica Radio across the Midlands. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा लहरा के आ।
1: This is Laika. That song, of course, was for my great buddy Harish Marwaha. Next hour, there is a special birthday treat for a special brother.

0: ऐसे गाने सुनकर दिल खुश हो जाता है. हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपेंस टू बी नन अदर देन साहिद लुधियानवी साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आई वुड से लिरिसिस्ट्स एंड पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया, हमारी इंडस्ट्री के. एंड लुधियानवी मीनिंग बोर्न इन लुधियाना, एंड ही केम फ्रॉम लुधियाना एंड ही सेटल्ड इन टू Mumbai and passed away on 25th October 1980, before his 60th birthday. So he was 59 and he passed away. What a man. इनके गाने अगर मैं बोलता जाऊं तो आप हर एक गाने पे क्या कहेंगे मालूम है? हां जी, तालियां मारेंगे और वाह वाह करेंगे. अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, वो सुबह कभी तो आएगी. मुकेश जी का गाना, ऐसे ऐसे गाने, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इट्स जस्ट अमेजिंग क्या लिखाई, इंडिविजुअल ओरिजिनल एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स. अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज यस साहिद लुधियानवी जी. And I will enjoy playing all these songs. ये गाना जो मैंने सुनाया, that was also wishing Dinesh Popat ji, हमारे wonderful listener of Laika Gold and a brother to me, a very happy birthday. हमारे वर्षा जी, क्या बात है? Every year, all Indians celebrate her birthday. Why? Because she was born on 15th of August. फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया के 80th इंडिपेंडेंस डे और इनका तो 21st ही होगा मुझे लगता है, वर्षा जी का. सो हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू वर्षा जी, एंड लेट अस नो हाउ यू सेलिब्रेटेड इट. ओके, आगे सुनिए.
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
0: ओके, आई हैव गॉट न्यूज फॉर यू एंड दे आर एक्साइटिंग न्यूज. Jay's Entertainment brings to you Bollywood legends live in London with Aftab Shivdasani, singers Aman Trekha and Mayur Patalia. Saturday, 3rd of October at Harrow Arts Centre. Tickets from box office, exclusive radio partners Laika Radio. And we got Sanjay Kapoor live. Jay's Entertainment brings to you Bollywood legends live in London with Sanjay Kapoor, singers Aman Trekha and Mayuri Patalia, Sunday 27th September at Leicester's De Montfort Hall. Exclusive radio partner Laika Radio. So these are double dhamakas by Jay's Entertainment, of course.
1: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: Leicester Falcon Cash and Carry, festive shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range, sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 lbs, sirf £13.49. Suhana Khaman Tokla 500 grams, sirf £1.99 each, ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg, sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 9 rupees se shuru. Aur Herdsman Butter Ghee 20 kg. KG sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West, Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell, Leicester LE54UN.
5: Southall Travel 7 days a week. Southall Travel 24 hours a day. We're at our peak.
6: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel. At all protected.
9: Kuch shaame calendar mein nahi, dil mein hamesha ke liye bas jati hai. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे।

0: है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Start to

0: book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल एट ओपटे।
2: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapuri 1-4 at Avanti Field School, Lester. 1-10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 0795747330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.

0: Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: It's time for everyone's favorite ride, the Radio Wally Roller Coaster.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.90 से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg still 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
5: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: Disha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
2: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
4: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान
1: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
0: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound
0: on Friday 11th September at the AO Arena Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
1: Zembi Productions supported by Rianne's Music.
0: Official radio partner Laika Radio Greater Manchester.
5: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने तो एक सवाल का जवाब दे
6: पूछ लो सर
5: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं
6: फरवरी सर
7: सर साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं
8: Yeah. India ke top 1% starts this September on Star Plus.
5: India ke top 1% sirf degree nahi dimag bhi jeetega.
4: A true Radio Wally cracker classic. Name the 90s number. This is Laika.

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: मुझे नहीं होगा, नहीं आती मुझे।
1: सच में पूछ रहा है किसी ने यार दुआ, कहते ना कि दुआ बस दिल से देनी चाहिए, अपने आप खुदा बोलो या भगवान, इश्क के साथ जरूर पहुंच जाती है। But it's that time of the evening where I tell you how much I love you, but I gotta be leaving you. But Fikr, not my lovelies, because in true Radio Wally style, I'm leaving you celebrating our Laika Artist of the Week, which is, of course, the handsome, the hero, and the very disciplined Akshay Kumar, with one of my favorite tracks, where he takes care of not one, not two, not three, not four, but five women. If you know which one I'm talking about, you're gonna love it. And of course, following that, one of those magical numbers to end your evening is Stalte. Until tomorrow, good night, God bless. Stay safe, stay warm, stay hydrated, or kal tak mucho pyar.
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu, and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Time to sit back and slide into Radio Wally's Lazy Lounge.
4: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है। आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू, और हर्ज बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
7: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop now at Foss Park.
2: Laika Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire, with the UK's biggest Asian hits. This is Laika Radio, part of the Laika Radio Network.

0: Mica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: जो करण अर्जुन में हुआ था वो बिग बॉस में दोबारा होगा। तथास्तु।
4: Big Boss returns for its 20th season this September, only on Colors TV.
5: Big Boss, Big Boss, Big Boss.
0: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations.
6: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over. To the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
7: Bollywood's biggest 90s songs.